0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हा 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
1: 90.4
2: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576
3: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

जी असमें प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां दोस्तन जा नाला खणंदासीं जिन में दोस्तन नाला लिखराया आहिनि ऐं वरी कुझु ॾहें बजे खां बाद में नाला खणंदासीं ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां दोस्तन यादि कहे ॻोठ मोलण माशी लॻे वॾनि महरनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख़्तार अली सोलंगी ज़हीर अब्बास सोलंगी ऐं वफ़ा हुसैन सोलंगी ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर ऐं ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्लाह जतोई मोहम्मद कासिम चांडियो ॻोठ खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर फहद अकबर अहसन अकबर अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो ऐं नारा स्टाफ सखर लग सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जूणे जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो यारमंद करोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद अली महेसर ऐं दोस्त आहिनि मीरपुर ख़ासि खां अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी ॿारनि जी वॾी महिरबानी ऐं लोहर कॉलोनी लाड़काणे खां अहमदाद अली दायो दिलबर सैफला ऐं जवाद दायो ऐं ॻोठ सचिरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां हाजी सोराब अली मंगरियो फरहान अली मंगरियो ऐं नज़र मोहम्मद मंगरियो ऐं क़ुर्बान अली ख़ासि खेली इनायत अली ख़ासि खली झंडो मरी खां ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां ऐं मीरपुर ख़ासि खां यासमीन मलिक ऐं भाग्यो खान शर आज़मदीन शर ॻोठ खां आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली भुगती लाड़काणे खां अब्दुल गनी अबड़ो शाहिद लतीफ़ ऐं जिनसार ओढो जजलाज लाड़काणे खां ऐं असदुल्ला जूणे जो फ़कीर अहमद अब्दुल बारी जूणे जो ऐं नंढड़ी बेबी अबीहा जूणे जो ॻोठ ठुल जूणे खां त सभिनि दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया ऐं ख़ूबसूरत नगमो आहे नूरजहान जे आवाज़ में सभिनी दोस्तनि जे नाम।

हा जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबह जारी ऐं सारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक यारहें वॻे ताईं असां वरी हलंदासीं पंहिंजो न्यूज़ जी ब्रेक जी तरफ़ ऐं कमर्शियल जी ब्रेक तरफ़ हलंदासीं वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो ऐं असां सां तव्हां पंहिंजा नाला शेयर करे सघो था फेसबुक जी आई डी ते बि ऐं SMS जे ज़रिए बि तव्हां पंहिंजा नाला 888-1 ते बि सेंड करे सघो था ऐं असांजो स्टूडियो नंबर बि आन आहे तव्हां हुन ते बि कॉल करे पंहिंजा नाला लिखाए सघो था असांजो नंबर आहे 0333221322888

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: कराची में रेंजर्स दहशतगर्द हमलन का पोए सिक्योरिटी फोर्सेस जो वडो ऑपरेशन 29 दहशतगर्द मार जी विया। जरियन मूजिब बाजोड़ वेझो कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम जमायत अल अहरार जा 4 दहशतगर्द मार जी विया, जिनमें इंताई घुर्बल दहशतगर्द कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल भी शामिल हो। ऑपरेशन सिलसिले में सरहदी इलाकन पक्तिका कुंडड़ में टिन अहम मरकजन के तबाह कयो वयो। कार्रवाई दौरान 25 दहशतगर्द मारजी विया। दहशतगर्दन के मरकजन में मौजूद वडे मकदार में हथियार ए गोला पुण तबाह थी विया। सिक्योरिटी अख्तियारन जो चवण आए त पाकिस्तान हमेशा खिते में अमन इस्तेहकाम लाए कोशिशूं कयूं आहिनि, पर शहरन जे सिक्योरिटीअ ते को बि समझौतो न कयो वेंदो। दहशतगर्दी जे खात्मे ताईं ऑपरेशन पूरी शिदत सां जारी रहंदो।

मुल्क में गैर कानूनी तौर तरछल अफगान शहरों खिलाफ बीहर क्रैकडाउन शुरू। अफगान शहरों के फौरी तौर गिरफ्तार करने जो हुक्म। घरू वजारत नोटिफिकेशन जारी कर छो। घरू वजारत मुल्क में बिना वीजा या गैर कानूनी तरछल रहंदड़ अफगान शहरों के फौरी तौर गिरफ्तार खेन वापस मोकलने बाबत आम नोटिफिकेशन जारी कर छो। नोटिफिकेशन मूजिब चैनी सूबन के चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर अफगान शहरों खिलाफ कार्रवाई लाए सख्त हिदायतू जारी कई।

ईरान ऐं अमरीका हिक ॿिए ते हमला रोकण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। अमरीकी ख़बरू इदारे जे रिपोर्ट मूजिब ईरान ऐं अमरीका जा नुमाइंदा हिक ॿिए ते हमला रोकण ऐं आबनाए हुरमुज़ जे तकरार खे हल करण लाइ कतर जी राजधानी दोहा में मुलाक़ात करण ते राज़ी थी विया आहिनि। ईरानी अख़्तरनि अमरीकी हमलनि ऐं मफ़ामत यादाश नामे जी शर्तनि ते भञकड़ीअ ते आचर ॾियारे रिथियल टेक्निकल ॻाल्हियुनि में हिसो न वरितो।

पाकिस्तान जो ईरान जंगबंदी मुआहदे ते अमल करण ते जोर, नायब वजीर अजम इसहाक डार ऐं यूरोपी यूनियन जे नुमाइंदे विच में फोन ते राब्तो। इस्लामाबाद मफ़ामत यादाश नामे ते पाकिस्तानी सफारत कोशन जी साराह। यूरोपी यूनियन पारां ईरान अमरीका विच में हाणोकी जंगबंदी जी भंकड़ीअ ते गणती ज़ाहिर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो त समूरनि धुरनि जंगबंदी मामले जी पासदारी कनि। इसहाक डार कल अलास्के पाकिस्तान जे अमन लाइ कोशन बाबति आगाही बि ॾिनी।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हां 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं गुलनि जी, त गुलनि जी मौसम बि आहे। गुल तमामु घणा सुठा ऐं सुहिणा थींदा आहिनि, जंहिंमें गुलाब जे जा गुल उन में मुख़्तलिफ़ रंग हूंदा आहिनि, ऐं राबेल जा गुल ऐं जेको आहे सो चमेली जा गुल। गुल त तमामु घणा हूंदा आहिनि, पर ख़ुशबू वरी कंहिं कंहिं गुलनि में हूंदी आहे, ऐं ख़ुशबू सभिनी गुलनि में न हूंदी आहे। पर के जेके गुलनि में रंग हूंदा आहिनि त सभु हिकु जहिड़ा रंग न हूंदा आहिनि, के अण वणंदड़ हूंदा आहिनि त के वरी रंग गुलाब जे गुलनि जा या ॿियनि गुलनि जा वणंदड़ हूंदा आहिनि। तमामु सुहिणा रंग हूंदा आहिनि, जीअं ॾिसो त रंग त वरी पोपड़नि में बि हूंदा आहिनि ऐं ॿियनि पखियुनि में बि हूंदा आहिनि, ऐं अलाह साईं जी ख़लकियल शयुनि मां तमामु जेके सुहिणियूं शयूं हूंदियूं आहिनि उहे तमामु दिलि खे वणंदड़ हूंदियूं आहिनि ऐं दिलि खे छुहींदड़ हूंदियूं आहिनि। इहे असांजे मालिक साईं जी हिकमत आहे ऐं हुन जी ख़लकत ऐं हुन जी ख़लकियल आहे, त उन ख़लकियल मां असांखे पंहिंजो हिकड़ो नज़ारो जेको आहे सुहिणो वणंदड़ लॻंदो आहे। जेकॾहिं तव्हां सुबुह जो सिज उभरण जो तव्हां नज़ारो ॾिसंदो त तव्हां खे तमामु वणंदड़ हूंदो, ऐं सुबुह जे वक़्तु थधे पहर में तव्हां खे उन जे गुलाब जे गुलनि जी ऐं बाग़नि जी जेका सूंह हूंदी आहे। ॾिसो त हर वक़्तु हर मौसम में पंहिंजा पंहिंजा फल फ्रूट हूंदा आहिनि। जीअं ॾिसो त पंहिंजो हिन वक़्तु तमामु हिकड़ी जीअं खणी असां शिती सीज़न चऊं ऐं औज चऊं हिकड़ो विच चऊं त अंबनि जो आहे। पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में जेका अंबनि जी सीज़न आहे तमामु सुहिणी आहे। अंबनि जा रंग ॾिसो कहिड़ा तमामु सुहिणा आहिनि, ऐं अंबनि जो जेको ज़ाइको आहे, ज़ाइको मिठाज आहे, उहो केॾो हिकड़ो वणंदड़ आहे। उन में केतिरियूं जिन्सूं आहिनि, के उन में अंब नंढा हूंदा आहिनि, के वॾा हूंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं वरी ॾिसो त हिन वक़्तु असांजे मार्केट में खजूर जो जेको फसल आहे उहो लही चुको आहे, जेके असां ॾोका चऊं, ॾंग ॾोका चऊं, खारकूं, ऐं ख़ासि करे हिन जेका स्टार्टिंग वारी सीज़न आहे त हिकड़ी ॻाल्हि दिलि ते ईंदी वञे थी त लूणी खारक जेका असां हुनखे हथरादो खारक बि चवंदा आहियूं, उनखे असां तेल में लूण में असां हुनखे थोरो नरम कंदा आहियूं त लूणी खारक ठही पवंदी आहे। उहा खाइण में तमामु हिकड़े मज़ेदार हूंदी आहे, हर माण्हू खाई सघे थो। ऐं डंग बि जेके ॾोका आहिनि उहे मार्केट में उहे बि अची चुका आहिनि, ऐं जे इंसान जे लाइ हिकड़ी तमामु फ़ाइदेमंद आहे। पर मां वरी ॿी गुलनि जी ॻाल्हि कंदुसि, अहिड़ा गुल गुलाब जा जिन असांजे मैसेज कयो आहे, असांजे फोन कयो आहे त असांजे नाला हलायो। अहमद नवाज़ कमर खां भाउ प्रोग्राम ॿुधे पियो, ऐं चनेसर बेहण आज़ाद बेहण मोरे खां, फ़क़ीर महरम जतोई ॻोठु आगा खान जतोई खां, रेहान खान बखर शहर खां मैसेज कयो आहे भाउ जी वॾी महिरबानी। नवीद चन्ना ॻोठु बाग चन्ना घोटकी खां, इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ास खां, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। असांखे तमामु सुहिणा गुल गुलाब जा इहे लॻनि था जिन असांखे फोन कई, हुन जी वॾी महिरबानी। ऐं ख़ूबसूरत नगमो अवां दोस्तनि जे नाम।

0: हाजी असमन गुलाब जा गुल महबूब शर ठरी मीरवा खां उन सां गॾु आहे रिज़वान शर इमरान शर ऐं नंढड़ी असमा ऐं उज़मा शर दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। त समय असां वरी हलंदासीं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वॻे ताईं ऐं कॾहिं बि न वञिजो, असां सां गॾु हुजो। तव्हां कॉल करे SMS ज़रिए ऐं तव्हां फेसबुक ज़रिए पंहिंजा नाला लिखाए सघो था ऐं असांजी मोबाइल स्टूडियो में आन आहे 0332-1322-88।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
2: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
1: आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
8: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331-252-5786।
8: जी हा 2131-5525-786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।
9: Yeah, it is.

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जी बुधंदा रहो डॉक्टर 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: तारीखी समाजी ए सकाफती वरसा भी यादगार है। शाह साहब वटे उन्हें तारीखी लोक किसन जी किरदारन जो अलग अलग मयार है। नूरी निमाणी न्याज ए निवड़त जी अलामत मारी हुबल वतनी जो आला किरदार सोनी जा सिक वारा सद ससुए जो डूंगर डोरण वारो सफर मतलब है। सब किरदारन लतीफ साईं जे शायरी जा सुर आहिन ऐं सब शाह साईं जो सेडल सुरमियूं जंहिंजो हौसलो हिमत न विसरण जहिड़ो आहे ऐं इहे ज़िंदा मिसाल आहिनि। ऐं शाहरनि पंहिंजे शायरी में सभिनी सुरमियुनि खे पंहिंजो शायरी में लिखियो आहे ऐं उन जा मिसाल न आहिनि। उन में काफ़ी जेके आहिनि उहे इश्किया मिसाल तमामु घणा हूंदा आहिनि ऐं जेके आम माण्हुनि खे मिसाल ॾिनो वेंदो आहे इहे सिंध जूं सकाफ़त आहिनि ऐं उन में इहे असांखे इश्किया जेके दास्तान आहिनि उहे असांखे हिकिड़ो सबक ॾियनि था, उहे असांखे हिकिड़ो मिसाल ॾींदा आहिनि त ही असांजो जेके सिंध जी सकाफ़त रही आहे। पर असुल इश्किया दास्तान इश्किया मिसाल ही आहे।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

जी हसमैन प्रोग्राम जा आखिरी लम्हा ऐं आख़िरी लम्हनि में कुझु दोस्तनि जा नाला वांदे पहुचाईंदा हलंदासीं। मोहम्मद ख़ान कुंभार, वफ़ा जमालदीन कुंभार, मोहम्मद अली कुंभार, हाले पोटा स्टाप लॻे झलोरी मीरपुर ख़ास खां, ऐं यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो, रिज़वान अली कलोड़ो ऐं माजिद जतोई, महरम अली भुरगड़ी, गुलाम अली भुरगड़ी ऐं अली मुराद भुरगड़ी, घोट करम खान भुरगड़ी तालको सजावल खां, ऐं तालके सजावल जे घोट पीर गुलशाह खां, नादर अली खजड़, लियाकत अली खजड़ ऐं गाज़ी ख़ान खजड़, ऐं अली ॾिनो जामरी, रईस मुश्ताक जामरी ॻोठ यारमन जामरी खां, ऐं अब्दुल गफ़ार मेंगल बिरोही ऐं सलेमान वधो ॻोठ शाहजले खां। भाइरनि जी वॾी महिरबानी, लख कुर्बानी।

अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर, अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

ईरान ऐं अमेरिका हिक ॿिए ते हमला रोकण ऐं कतर में ॻाल्हियूं करण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। अमेरिकी मीडिया जी दावा, अमेरिकी मीडिया मूजिब तहरान हिक ॿिए ते हमला रोकण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सिधी रीत ॻाल्हियूं बि थींदियूं, जंहिंजो महिवर आबदा हरमुज़ हूंदो। ॿई मुल्क हाणे हिक ॿिए ते हमला बि न कंदा। आबदा हरमुज़ मां बहरी जहाज़नि खे लंघण खां न रोकियो वेंदो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुफ़ाहमती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि जारी आहिनि। ईरान जो अमेरिका ऐं इसराइल ते मुफ़ाहमती यादाश्त जी भञकड़ी करण जो इल्ज़ाम। ईरानी परदेह वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमेरिका ऐं इसराइल मुफ़ाहमती यादाश्त जी पहिरीं शिक जी भञकड़ी करे रहिया आहिनि, जंहिं सबब ख़िते में अमन इस्तेहकाम बहाल न थी रहियो आहे। मुआदे ते नेकनीयती सां अमल दरामद जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। तहरान मुआदे ते मुकमल अमल दरामद चाहे थो। मुआदे जी भञकड़ी ते ॿी धुर ख़िलाफ़ फैसलाइता कदम खया वेंदा।

सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फैसले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे सीसीए सीएसएस 2024 जे पेपर जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करण जो हुकुम ॾिनो हो।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी तीन तरीके कार्ड से। आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, SPACE मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, डैड इज GFM 88 के पेज के ऊपर पोस्ट मिलती है आपको जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488। इसके ऊपर कॉल की जा सकती है, तो कॉल कीजिए।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, बुड़ी 231-525-786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: once again, आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अब कॉल्स के थ्रू क्योंकि हम अपना अपना अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज सुर लगाओ गाना सुनाओ और सुर लगाओ गाना सुनाओ मैं आप लोगों की कॉल्स में पिक करने वाली हूँ 03000113488 जिसके ऊपर अगेन और साथ साथ जो हमारी पोस्ट है ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं सॉरी पोस्ट जो हमारी पोस्ट है ना उसके ऊपर आप लोग कॉमेंट्स कर सकते हैं जो ये FM88 के पेज के ऊपर आपको मिल जाती है ईजी सो उसके ऊपर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. सो कॉल्स आप लोगों की पिक करना हम स्टार्ट करते हैं. जी फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल चेक करेंगे कॉलर कहां से. हेलो ओके जी मुझे आवाज नहीं आ रही है हम चेक करेंगे कि ये आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो थोड़ा सा लाउडली बात करें. हेलो ओके जी मजबूरन मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से जिन्होंने कॉल की है वो बोल नहीं रहे हैं. सो नेक्स्ट कॉलर हेलो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: हेलो
0: जी कौन बात कर रहे हैं कहाँ से. हेलो
1: हेलो
0: हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है. हेलो ओके जी वेरी बैड ऐसे नहीं करना चाहिए था. 03000113488 के ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. नेक्स्ट कॉलर हेलो
2: हेलो
0: वालेकुम अस्सलाम आवाज आ रही है आपको मेरी.
2: हेलो
0: हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है.
2: हेलो
0: हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है.
2: हेलो
0: हेलो
2: आवाज़ नहीं आ रही.
0: मेरी आवाज नहीं आ रही ये इशू है. ओके इसको हम चेक करेंगे आवाज क्यों नहीं आ रही. हेलो अब आवाज आ रही है.
2: नहीं नहीं आ रही
0: अभी भी नहीं आ रही. ओहो ये तो गलत बात है ये क्यों नहीं आ रही. आपको मेरी आवाज आ रही है अब. हेलो ओके मेरी आवाज नहीं आ रही. ओके जी एक और ट्राई करेंगे और ये देखेंगे आवाज क्यों नहीं आ रही. हेलो
3: ठीक है
0: आवाज आ रही है.
3: हाँ ठीक है
0: ओके कौन बात कर रही है.
3: अभी तक नहीं पहचाना इतनी बात की.
0: अभी तक नहीं पहचाना मैं पहचानूंगी ना आप बताएंगी तो मैं पहचान जाऊंगी.
3: अच्छा
0: कौन बात कर रही है सॉरी. दुआ कवल बात करिए. दुआ कवल अब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही. आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है.
3: अच्छा सिस्टम में कोई मसला होगा.
0: अच्छा अच्छा मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रही है.
3: हाँ.
0: गाना सुनाएंगी. हेलो गाना सुनाएंगी. मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है और ये क्यों हो रहा है.

0: ओके जी एक और ट्राई करेंगे. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी कौन बात कर रहे हैं कहाँ से? हेलो कौन बात कर रहे हैं कहाँ से? हेलो वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहे हैं कहाँ से? मेरी आवाज नहीं आ रही है, लगता है फिर ये कोई इशू है हमारे पास. एक और ट्राई करेंगे जी. हेलो वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहे हैं? ओके जी मुझे बताएं कि अदा प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाना सुनाएंगे?
1: हाँ जी बताएंगे, गाना सुनाएंगे बिल्कुल.
0: सुना दें.
2: दुश्मन कुछ करे क्यों तो जुदायो दीदार तो के दुश्मन कुछ करे दुश्मन कुछ करे.
0: ओके okay.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252578।
4: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

0: वैक्सीनेशन स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
0: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामने
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
0: एक शानदार आई
2: FM 88 नेटवर्क ते
1: छा तवा भी पांजो ख्वाबन जो घर ही के

0: योगी जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक है. और सुलगाओ गाना सुनाओ हमारा सेगमेंट है जिसमें आप लोगों की हम लाइव कॉल्स ले रहे हैं 03000113488 इसके ऊपर. और चेक करते हैं जी नेक्स्ट कॉलर. और इस बार चेक करते हैं कि हमारी आवाज चली जाए. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैं ठीक हूँ. मेरी आवाज आपको आ रही है?
1: आपकी आवाज बहुत कम आ रही है.
0: मेरी आवाज बहुत कम आ रही है? अच्छा, ये चले. अब ठीक आ रही है? अब बेहतर है? अब बेहतर आ रही है?
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट-कट के आ रही है.
0: कट कट के आ रही है? आ तो रही है ना. आ रही है वैसे आवाज? आ रही है आपको मेरी?
1: आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही आती.
0: चले फिर गाना ही सुना दे हमें. हम गाना प्ले करते हैं और ये चेक करते हैं हमारे पास क्या कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है. गाना सुनाएंगे?
1: हेलो
0: हेलो
1: जी,
0: गाना सुनाएंगे कोई?
1: जी जी मैं सुन रही हूँ, मसाला बहुत अच्छा है.
0: अच्छा, तो कोई गाना सुनाएंगे? चले, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज. और

0: कॉल कीजिए, एक और कॉलर लेते हैं, चेक करते हैं. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. ओके जी, आवाज नहीं जा रही है क्या? एक और कॉलर लेंगे. हेलो हेलो. ओके जी, गाना सुनते हैं, इंजॉय करते हैं.
1: Hello?
0: एक मिनट है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: हेलो हेलो.
0: ओके जी, कॉलर को अभी भी हमारी आवाज नहीं जा रही है, तो हम जाते हैं न्यूज ब्रेक पे, वापस आते हैं, उसके बाद हम अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इस इश्यू को हम रिजॉल्व करें. स्टे ट्यून, जिंदगी गुजार है.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान अमेरिका जो कमेटी हमला रोकने कतर में गालियों करने ते तफाक अमेरिकी मीडिया जी दावा अमेरिकी मीडिया मुजिब तेहरान कमेटी हमला रोकने ते तफाक कयो आहे बिन्ही मुल्कन विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सीधी रीत गालियों भी थींदियूं जंहिंजो बहबर आबना हरमूस हूंदो बई मुल्क हाणे हिक ॿिए ते हमला बि न कंदा आबनाए हरमूज मां बहरी जहाज़नि खे लंघण खां न रोकियो वेंदो ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुफ़ाहमती याददाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि जारी आहिनि। ईरान जो अमेरिका इसराइल ते मुफ़ाहमती याददाश्त जी भञकड़ी करण जो इल्ज़ाम ईरानी वॾे वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमेरिका इसराइल मुफ़ाहमती याददाश्त जी पहिरीं शिक जी भञकड़ी करे रहिया आहिनि जंहिं सबबि ख़िते में अमन ऐं इस्तेहकाम बहाल न थी रहियो आहे। वाइदे ते नेक नीतीअ सां अमल दरामद जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। तेहरान वाइदे ते मुकमल अमल दरामद चाहे थो। वाइदे जी भञकड़ी ते ॿी धुर ख़िलाफ़ फ़ैसिला हितां क़दम खया वेंदा। कराची जे कारोबारी मर्कज़ गुल प्लाज़ा खे लॻल बाहादो करार पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वटि जमा कराए छॾियो। गुल प्लाज़ा बाबति अदालती जांच रिपोर्ट खे चालान जो हिसो न बणायो वियो। दुकानदार नेमतुल्ला ऐं संदसि 11 सालनि जे पुटु हुज़ैफ़ा खे जवाबदार तौर नामज़द कयो वियो। गुल प्लाज़ा कमेटी जे सदर तनवीर बासा नायब सदर अमार इस्माइल ऐं ॿियनि खे बि केस में नामज़द कयो वियो। जांच रिपोर्ट मूजिब गुल प्लाज़ा में बाहि लॻण सबबि 72 माण्हू सड़ी फौत थिया। हिन वक़्त ताईं 4 लाशनि जी बाक़ियात कंहिं बि वसूल नाहे कई। सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फैसले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे CC 2024 जे पेपर्स जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करण जो हुकुम ॾिनो हो। कैरपुर जे कच्छ में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में झेड़ो, हिकु ॼणो क़त्ल, 2 ज़ख़्मी। थुलो थाणे जी हद ॻोठ कोराई में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो थियो। फायरिंग में रोशन कोराई मारिजी वियो। करावर ऐं मोहम्मद सिद्दीक कोराई ज़ख़्मी थिया। धुरियुनि में छिकताण वधी वई। सकरण वेझो वॾी अॻु सिंधु दरिया में टिकटॉक ठाहींदे ॿुॾी वियल नौजवान फहीम जुणे जो लाश थिए। ॻोठ दंगवासी नौजवान फहीम जुणे जो टिकटॉक वीडियो ठाहींदे दरिया में ॿुॾी वियो हो। कोटली भरिसां सिंधु दरिया मां अधूरो शख़्स जो लाश थिए इस्पताल मुंतकिल, सुञाणप न थी सघी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में हिक औरत समेत 4 ॼणा फौत। कंबत में कौमी शाहराह ते ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टकर। नारी फिज़ा ख़ासि खे हयाती विञाए वेठी, अलाया ज़ख़्मी थियो। कश्मो में टायरा टुटण सबबि मज़दा BS फीडर में किरी पई। ड्राइवर अली हसन उगाई फौत। कराची जे बल्दिया वारे इलाइक़े में तेज़ रफ़्तार गाॾी जो मोटरसाइकिल खे टकर। 2 ॼणा फौत, लाश इस्पताल मुंतकिल। फौतुनि जी सुञाणप न थी सघी। शाहपुर डाकर में घर में दाखिल थी फुलुट कंदड़ 4 औरतूं पकड़िजी पयूं। पुलिस हवाले न्यू कॉलोनी में 4 औरतुनि मलिक अज़ीज़ जे घर में घिरी पीसन औरत खे जगमाल बणाए वरितो। औरतूं सोना ज़ेवर ऐं रोक रक़म खणी फरार थियण लॻियूं त औरत जी रदियुनि ते ॿिए कमरे में सुतल मर्द जाॻी पिया। औरतुनि खे पकड़े पुलिस हवाले कयो वियो। केस दाख़िल। कुंडी में लंघ बंद करण तां बिंदुनि में झेड़ो, भील बिरादरी जो एहतजाज। भील बिरादरी कुंडी उमरकोट रोड ते धरणो हुयो ऐं लंघ खुलण जो मुतालबो कयो। मंज़ूराबाद वेझो शहज़ोर गाॾीअ खे बाहि लॻी वई। गाॾी सड़ी रख, ड्राइवर महफ़ूज़ रहियो। खाणोट वटि इंडस हाईवे ते रोड ते कलर जा पटा कढ़ंदड़ शहज़ोर गाॾी खे ओचितो बाहि लॻी। बाहि लॻण खां पोइ गाॾी जा गैस सिलेंडर बि फाटी पिया। बाहि सबबि शहज़ोर गाॾी मुकमल तौर सड़ी रख थी वई। यूरोप में गर्मीअ में फोतुनि जो अंगु 1300 खां वधी वियो। WHO वधीक फोतुगिन जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो। सिहत जे आलम इदारे WHO मूजिब यूरोप में गैरमामूली गर्मीअ सबबि फोतुगिन जो अंगु 1300 खां वधी वियो आहे, जंहिं में वधीक वाधि थी सघे थी। यूरोप धरतीअ ते तेज़ीअ सां गरम थींदड़ ख़ितो आहे।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदी निक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हाँ 3135525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दिखे मेरे साथ मुझे पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू. हमारा अगला सेगमेंट है जी बोलो तो माने. और बोलो तो माने में आप लोग टंग ट्विस्टर कह के दिखाएंगे कि लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. ठीक है, ये कहेंगे लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. और इसको कह के दिखाएंगे. और जब आप ये कहेंगे ना तो आप जीनियस कहलाएंगे. जो बंदा अच्छा अच्छा बोलना जानता हो और अच्छा अच्छा कहता हो तो डेफिनेटली मतलब वो विन कर जाएगा इस सेगमेंट को.
1: Yo, we up in the mix, yo. We got some brand new shit.

0: आपका प्रोग्राम सुना और कान लगाने में मसरूफ थे ना, ये टांग टेस्टर हमने नहीं सुना, लेकिन आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं और सुनेंगे भी।
1: ओके, टांग टेस्टर नहीं सुना तो मैं बताऊं, बोलेंगे?
0: बताओ।
1: आपने कहना है लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च।
0: लाल लाल शिमला मिर्च रुखा रही हो मस यो नतीनो बियो यो अर्जा थांग जो शाम जो प्रोग्राम जो कंदा हो कयो था नता कयो।
1: वो बिल्कुल होगा, वो मुहर्रम की वजह से शोज हमारे जो है क्लोज थे, लेकिन अब शोज जो है दोबारा स्टार्ट होंगे।
0: तो शाम को होगा नहीं होगा?
1: होगा
0: होगा, शाम जो शो कंदा हो ना।
1: हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह।
0: अल्लाह सही आ मौला खुश रखन वे असांगे जे थी सके कलाम मुद्रायो अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, जमाने को मैं दिखता नहीं हूँ।
1: जमाने को मैं दिखता नहीं हूँ किसका गाना है
0: ये? आप चलाती है ना कभी कभी अफसाने अब लिखता नहीं हूँ टाइटल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला अफसाने चले चलाते हैं जी, चलाते हैं।
0: ओके, बड़ी मेहरबानी आपके, तमाम सुनने वालों को सलाम, आपको सलाम, जो भी सुन रहे हैं जो खुश रहे और उनसे ज्यादा आप खुश रहे।
1: ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।

0: एक और कॉलर लेते हैं जी. और नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. दुआ कवल
1: जी,
0: टंग ट्विस्टर सुना भूलेंगी?
1: हाँ बोलूंगी, लेकिन फिर भी आपकी आवाज बहुत ठीक नहीं आ रही.
0: अच्छा तो मैं बताऊं भूलूंगी?
1: नहीं, मुझे याद ही बता दूंगा आपको.
0: अच्छा आपने कहना है लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च.
1: लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. लाल
0: yes.
1: लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च.
0: ओके ओके, वेरी नाइस. अच्छा दुआ कवल, दुआ कवल मुझे ये बताएं और कुछ कहेंगी? और कुछ कहेंगी?
1: हाँ, गाना लगता है नहीं मेरा.
0: कौन सा गाना सुनना है आपने?
1: मेरी कॉल लगी तो गाना भी लगेगा.
0: कॉल लगी तो गाना भी लगेगा, चले लगा देते हैं जी. और वैसे मैंने काफी लोगों के गाने प्ले करने थे, वो हमारा कुछ टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से ना ये गाना हम प्ले नहीं कर पाए, लेकिन अब करेंगे. सादगी तो हमारी जरा देखिए. ओके अभी चलाते हैं जी, चलाते हैं थोड़ा सा हौसला. थैंक यू, बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह.

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: खबर वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है हमारा सेगमेंट बोलो तो माने और 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग तो कॉल कीजिए. और इसके अलावा आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी कॉल्स के थ्रू.
1: एक मिनट रुकी मेरा वेट कर
0: 03000113488 साथ साथ मैसेजेस और कमेंट्स भी आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं.
1: लेकिन पहले चेक द पैरामीटर गानों के बढ़ते डेसिबल चेक द बढ़ते डेसिबल इट्स इनक्रेडिबल मैं किस्मत चुगदाई कैसे किस्मत भूल आई आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट गिव इट बैक टू द बैड द मार्शल मैड मेरा इंस्टिंक्ट एनिमलिस्टिक मैड मैजिशियन या मैथमेटिशियन.
0: अच्छा कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ अगर आते हैं तो इकबाल लाशारी ने हमें कमेंट किए हैं जी. सुनो खान लाशारी मीरपुर खान से सुन रहे हैं बाजी रुखसार नाइशो. अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं जी. अब्दुल रजाक कहते हैं कि मोहम्मद खान कुंभर से. इसके अलावा गुलाब खान लगारी गोट भाषम खान रिंद से. शेर गाजी खान रिंद हमें सुन रहे हैं. चाचा मंठार रिंद रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कोने इंजेरा बाजी आपका शो हमें आपके शो का हमें इंतजार रहता है. आपकी कंपेयरिंग लाजवाब है. अल्लाह पाक आपको खुश रखे. थैंक यू सो मच भाई मेरे. और आज का टंग ट्विस्टर लाल लाल हरी मिर्च मिर्च शिमला मोटी मिर्च ये कहना है. और इसी के साथ हम गाना चेंज करेंगे गाना प्ले करेंगे अगला और सुनेंगे एंजॉय करेंगे गाने के साथ आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजानपन, अब सबको कहे अलविदा बेस्ट लुक।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
4: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हाँ बुड़ी 331 5576।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आकर मेरे साथ पूरी एक बजे तक का है जी, और कॉल्स का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं जी, और चेक करते हैं कि कौन और कहां से. अच्छा, वो जो टंग ट्विस्टर वाला हमारा सेगमेंट था उसमें कुछ हम ज्यादा मैक्सिमम कॉल्स नहीं ले पाए हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू. और इसी वजह से हम अभी आप लोगों की बैक टू बैक मैक्सिमम बहुत सारी कॉल्स लेने की कोशिश करेंगे. सो कॉलर मेरे साथ लाइन पे मौजूद होंगे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम. सागर भाई बात कर रहे हैं?
1: जी मैम, सागर भाई.
0: सागर भाई कैसे, ठीक ठाक? थोड़ा सा लाउडली बात करें और मुझे बताएं प्रोग्राम सुन रहे हैं? बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं. मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ प्रोग्राम. और मुझे ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है प्रोग्राम?
1: प्रोग्राम तो जबरदस्त लगता है ना, करता
0: है. चलें फिर इसी बात पे, इसी बात पे आज की अच्छी बात बता दें
1: जी.
0: इसी बात पे आज की अच्छी बात बता दें.
1: अच्छी बात ये है कि मैं बस जो है ना, औलाद को अपनी फरमा बरदारी दिखानी चाहिए, माँ बाप का कहना मानना चाहिए और टाइम जाया नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता. बस रब पाक हर किसी को अपना मोहताज रखे, किसी को दूसरे का मोहताज ना रखे.
0: चले, बहुत जबरदस्त बात, थैंक यू सो मच. और कुछ कहना है
1: मैम? गाने का सेगमेंट खत्म हो गया.
0: हाँ, अब तो प्रोग्राम ही खत्म होने वाला है.
1: बस भाई, मेला खत्म हो गया. मैं आखिरी में जो है पंडित.
0: मेला खत्म हो गया. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच.
1: खत्म हो गया, मैं आखिरी में पहुंचा झाड़ू लगाने के लिए.
0: बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने अच्छी बात बता दी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज. ये थे कॉलर और मैं कोशिश करूंगी कि एक और कॉलर लूं और फिर उसके बाद एक और कॉलर लूं. अच्छा, नेक्स्ट कॉलर चेक करेंगे जी, कॉलर कहाँ से. हेलो. हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है. नहीं करनी बात.

0: गर्मी का हो या पड़े ठंड,
1: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन,
0: तबीयत हो डल या छाए सुस्ती,
1: मिलेगी लॉट्स ऑफ मस्ती,
0: ओनली ऑन GFM 88 नेटवर्क।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अमाजी बारन जी बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जिलाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलाओं जो शानदार ऐलान। हाने पंजे बारन के बनायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM आई 5 साल DPD जनेटर बिन सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV CMW ICNA ऐं खास गाल मुस्तहक शागिर्दन लाए स्कॉलरशिप्स पिण मौजूदा हैं। जनेटर बिन सालन जे कोर्सेज में दाखिला बिल्कुल फ्री आहे। सहूलतों ऐं मान्यता असां वट मौजूदा है। स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस एसी क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी हॉस्टल एंड ड्रॉप जी सहूलत है। ही इधारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर थियल आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
8: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
8: आई। हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाएं लाए
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर

0: ते राबतो कंदा
1: 0331252586।
0: जी हाँ, बुड़ी 331 525 786।
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

White Ish Beauty Cream, Glowing Skin to Raz, a product by Biocon International Pakistan. अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो. पेश आहे वाइट एंड सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.

ओके प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आगे सिद्धर आपके साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार हैं जिन्हें फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे सब कुछ बताएंगे लेकिन आज के प्रोग्राम में टॉपिक यानी कि सवाल क्या होने वाला है वो तो बता देना तो बिल्कुल जी आज के अगर सवाल की बात की जाए तो आज आप मुझे ये बताएंगे या ऐसा कह लें कि आप मुझसे पूछेंगे या फिर मुझे कहेंगे तो आज टॉपिक कुछ यूं होने वाला है कि आपने ना अगर सिर्फ एक मशवरा देना हो मुझे तो क्या ऐसा मशवरा है जो कि आप मुझे देना चाहेंगे बहुत सारे ऐसे मशवरे होते हैं जो कि हम लोगों को दे रहे होते हैं मुफ्त में दे रहे होते हैं कोई पैसे वैसे नहीं होते मशवरे के लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक ना आदत होती है वो बस बिला वजह लोगों को मशवरे देते रहते हैं तो आज आप ऐसा करेंगे कि आज आप मुझे एक ऐसा मशवरा देंगे जो कि आप लोगों को लगता है कि इस मशवरे के ना सिद्धरा को बड़ी जरूरत है तो बताइए जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं अगर आप शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे अपना सेलफोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर और अगर आप हमें फेसबुक पर सुनने वाले लोग हैं फेसबुक पर सुनते हैं फेसबुक पर शामिल होते हैं तो आज थोड़ा सा उनके लिए ऐसा है कि बैठ नहीं हो सकती है और इसके साथ साथ में कॉल आप लोगों की तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा ठीक हो गया तो इस तरीके कार को फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम की रौनकों को मजीद बढ़ा सकते हैं तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जो कि आप लोगों के लिए है जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप खूबसूरतियां हासिल कर रहे हैं और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी कर रहा है और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जैसे कि हर तरह के प्रोडक्ट्स अब मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आप लोगों के साथ तो एक ऐसी बात भी है कि आप लोगों में से बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं सुने हैं या फिर बहुत से लोगों की ये आदत होती ना वो ये कहते हैं कि भाई हम फलां प्रोडक्ट नहीं लगाते हमारे लिए ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए तभी हम इस्तेमाल करेंगे कुछ लोग साबुन नहीं लगाते कुछ लोग फेस वॉश नहीं लगाते कुछ लोग नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं कुछ लोग फेयरनेस क्रीम लगाने वाले हैं कुछ लोग एक्नी की वजह से परेशान है तो हर तरह का प्रोडक्ट भाई वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है बस आप हुक्म कीजिए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं मैं बताऊंगी कि वो प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के ऊपर ना किस तरह से काम करेगा और किस तरह आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखेगा तो खूबसूरत रहेंगे खूबसूरतियां हासिल करेंगे और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहेंगे और साथ ही साथ शामिल प्रोग्राम होते जाइए और मुझे बताइए अगर एक मशवरा आप मुझे देना चाहें एक मशवरा मुफ्त वाला मशवरा तो ऐसा कौन सा मशवरा होगा जो कि आप लोगों को लगता है कि इस मशवरे की सिद्धरा को जरूरत है हाँ जी वैसे तो मशवरों की जरूरत होती है हर एक इंसान को लेकिन मशवरा जो है वो

0: जरा काम का और ढंग का होना चाहिए। तो आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आप हमें ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल जी आपके मैसेजेस, आपकी प्यारी प्यारी बातें प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। ओके जी, सो इस प्रोग्राम में यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं 888-1 पर, और आपकी कॉल्स भी, लाइव कॉल्स भी बिल्कुल जी प्रोग्राम का हिस्सा होने वाली है। तो बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, और लाइव कॉलिंग नंबर जो है वो मैं आप लोगों को जो है ना वो 2 बजे के बाद बताऊंगी, क्योंकि कॉल जो है वो 2 बजे के बाद ही ली जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया है जी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सिद्रा आप कैसे हैं और हाउ आर यू, हम सारा काम छोड़कर आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है बाजी, हम आपकी खातिर नींद को छोड़ते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ते, हमें शीरा खुल का गाना सुनाइए दिल तो की नई छड़ी चाय याद करने थोरो हो जाए, बिल्कुल जी गानो तव्हांखे बुधराई दासी प्यारा भात तव्हांजो मोहब्बतूं आहिनि, तव्हां निंड खे जेको आहे साइते रखी करे तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो, तव्हांजो मोहब्बतूं आहिनि, अहिड़ा प्यारा प्यारा मैसेज कंदा आहियो, पोइ सच में भला लॻंदा आहियो। ओके जी, सो तव्हां अगरि मूंखे को मशवरो ॾियण चाहियो त कहिड़ो मशवरो आहे जेको तव्हांखे लॻे थो त हीउ मशवरो सदरा खे ॾियणु घुरिजे? अच्छा, फहा डेरी हमारे साथ हैं और ये सऊद डेरी हैं, फ्राम नवाब शाह कहते हैं मोला इस्लाम मदद, अदी शो तव्हांजो बहितरीन आहे, थैंक यू सो मच प्यारा भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहे, ऐं हिकु मैसेज खे तव्हां ॿ दफ़ा शेयर करे छॾियो आहे उन जे लाइ बि मोहबतूं, वरी टियों दफ़ो बि तव्हांजो मैसेज अची वियो आहे सेम, सो उन जे लाइ बि मोहबतूं, मायरा असांजो प्रोग्राम ॿुधे पई, मायरा तव्हांजो बि मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम में अगरि तव्हां सां सां गॾु मौजूदु आहे त असांखे ॿुधाईंदा हलो, पैनल थी तव्हां मैसेज कंदा ऐं तव्हां कॉल्स कंदा, अॼु कॉमेंट्स वारो थोरो जेको सिस्टम आहे न उहो थोरो ऑफ आहे, छो त कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे टेक्निकल इशूज़ बि अची वेंदा आहिनि, ऐं इहे टेक्निकल इशूज़ बि असांजी ज़िंदगी जो हिसो आहिनि, सो का ॻाल्हि कोन्हे का। ओके जी, मजे करते हैं प्रोग्राम में आप लोगों के साथ साथ, और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने लगे हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हमारे पास आ चुके हैं, उसके बाद हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।
1: GAFM 88 हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम,

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर अपना घटली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
1: मिले चमकदार निखार ताजगी सागर व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, तो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं CFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातिली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आए हाय क्या बात है, दोनों ही प्रोडक्ट्स का अगर जिक्र किया जाए तो भाई दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अगर मान ले ये बात कि हम अगर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं तो ये बात आप लोगों को जरा वाजे करते चलें कि अगर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनमें आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिलने वाला है। और हर तरह का प्रोडक्ट मिलेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया है, नो नेवर। क्वालिटी की अगर बात की जाए तो क्वालिटी में आए हाय इतने जबरदस्त तरीके से इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। हर तरह से नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं और हर तरह से आपकी स्किन का ख्याल रखा गया है, आपके खूबसूरती का ख्याल रखा गया है। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को पहले मैंने बताया कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए वाइट एज ब्यूटी सोप अवेलेबल है, वाइट एज फेस वॉश अवेलेबल है, वाइट एज लवली क्रीम अवेलेबल है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अवेलेबल है एंड वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है। उसके अलावा वाइट एज का लोशन भी मौजूद है एंड वाइट एज के हेयर रिमूवल लोशन भी मौजूद है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स तो आप लोग इजीली से ना वो परचेज कर सकते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर, और वहां से जाकर जब आप परचेज करेंगे तो उसके बाद आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा। एक और मजे की बात बताते चलो कि अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि ये बन रहा है कि आपके करीबी जनरल स्टोर के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे तो उसके लिए आपके पास नंबर मौजूद है जिसके ऊपर आप रابطہ करेंगे, कॉल करेंगे प्रॉपर या फिर आप एक छोटा सा मैसेज करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपके एरिया में नहीं मिल रहे हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि वो अवेलेबल करा सके। उन्हें अपना जो है ना वो एरिया बताइएगा, आप प्रोग्राम सुनते हैं और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं ये उन्हें बताइएगा। अगर आप कॉल करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है तो आप एक छोटा सा मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो नंबर है जनाब 03-15-799-05-95। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिएगा और आपको जो है ना वो रिस्पांस मिलेगा, अच्छे से रिस्पांस मिलेगा। और इसी के साथ साथ जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि सिद्रा ये तो बताएं कि इस्तेमाल करें तो क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये हमें सारी चीजें जो ना वो मिलेगी। तो एक और मजे की बात है कि जब आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगी बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखेगी। वो ऐसे क्योंकि इसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है और मिल्क मौजूद है। जैसे आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन को गोरा बनाती है, हर किस्म के नुकसान और असरात से आपकी स्किन को पाक रखती है, झुर्रियां हो, दाग धब्बे हो, इन सब चीजों को खत्म करती है। और वाइट एज ब्यूटी क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई ना मजे की बात। बिल्कुल जी, तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, मर्द हज़रात और ख्वातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करने के बाद आपको मिलेगा ऐसा खूबसूरत सा निखार जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। उसके साथ साथ अगर आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन साथ में आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ और आप मत इस्तेमाल कीजिएगा, आप लगाइएगा वाइट एज ब्यूटी सोप। अगर आप ऐसा सीन है कि कोई भी क्रीम नहीं लगाते हैं, आप थोड़ा सा क्रीमों से दूर भागते हैं, तो आप वाइट एज ब्यूटी सोप इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि साबुन तो हर किसी की एक बेसिक सी नीड होती है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वाइट एज ब्यूटी सोप का आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है। और उसके अलावा अगर आप सोप नहीं लगाते या फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं तो भाईजान आपके पास मौजूद है वाइट एज का विटामिन सी फेस वॉश जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, आपकी स्किन ग्लो में आ जाती है। और इतना क्रीमी फेस वॉश है ना कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितनी अच्छी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साबुन भी अवेलेबल है, फेस वॉश भी अवेलेबल है, जो चीज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अवेलेबल है। इसी के साथ साथ अगर आप एक्नी को लेकर परेशान है, तव्हांजे चेहरे ते दाणा ॾाढा अची विया आहिनि, दाणा तव्हांखे नथा छॾनि, तो बाबा उन्हें चलाए तवान चलाए मौजूद है डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ही नालो तव्हां याद रखो, इन नाले की अगर तव्हां याद रखना तो तव्हां पंहिंजे चेहरे जा जेके एक्नी ना उन्हनि खे खत्म करण जे लाइ सफ़ा आसान फार्मूलो आहे। सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आहे जेको आयुर्वेदिक फार्मूले सां तयार थियल आहे, जंहिंजे अंदर न फुल जड़ी बूटियूं एड थियल आहिनि। अगरि तव्हां इहो सोचो था त केमिकल कोई बि हिन में एड थियल हूंदो त न बाबा, सभु जड़ी बूटियूं हिन में एड थियल आहिनि। ट्री ट्री ऑयल आहे, एलोवेरा आहे, मिंट आहे, उन खां अलावा नीम आहे,
आहे खोड़ अड़ा सारा इन जे अंदर चीजों एड कई वयन जेके तवा जी स्किन जे दाणा हुजन या फिर दाणे जे निशान हुजन या वरी तवा जी स्किन ते ब्लैक हेड्स आइन वाइट हेड्स आइन एक्नी पोर्स आइन या वरी एक्स्ट्रा ऑयल आहे उन सबनी चीजन के खत्म करी तवा जी स्किन के क्लियर बनाइंदो आई तवा जी स्किन के खूबसूरत बनाइंदो सो ही आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेके तवा राजे टाइम इस्तेमाल करी सगो था यानी कि सुमण का पेरा तवा छा कंदा पानो फेस वॉश कंदा वाइटिश साबुन लगायो या फेस वॉश लगायो अच्छे तरीके सा पांजो फेस वॉश कयो क्लीन कयो उनखा पोई डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको पांजे स्किन ते अप्लाई कयो तवा जी चेहरे जा दाणा हुजन निशानात हुजन या फिर कोई धक जो निशाना कोई सड़न जो निशाना ये भी अगर निशान तवा जे चेहरे ते मौजूद आन उही भी खत्म थी वेंदा एंड डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तवा जी स्किन के सफा क्लियर बनाइंदो खूबसूरत बनाइंदो शाइनी बनाइंदो उनखा अलावा असा वट रहजे तो बाबा एकडो प्रोडक्ट जेजो नालो आहे वाइटिश लवली क्रीम एंड वाइटिश लवली क्रीम जेका तवा जाहिर सी गाला ही उनन मानन जे लाया है जेके भाई फेयरनेस क्रीम लगाईंदा आहे या फिर उनन के यो आता सा उमिर असांजी नंढी आहे असां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयूं अञा तव्हांजी उमिरि नाहे थी त तव्हां वाइटिश लवली क्रीम इस्तेमाल करे सघो था छो त हिन जे अंदर वाइटमिन्स जो फार्मूलो एड थियल आहे 30 वाइटमिन्स कैप्सूल आहिनि रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स सां ठहियल हीअ क्रीम आहे फेयरनेस फार्मूलो आहे वाइटिश लवली क्रीम जंहिंजे अंदर सनस्क्रीन बि एड थियल आहे ऐं तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरती ॾियण सां गॾोगॾु तव्हांजी स्किन खे उस जे असरातनि खां बि महफ़ूज़ रखंदी आहे सो वाइटिश लवली क्रीम जेके तव्हां ॿार आहियो मर्द आहियो ख़वातीन आहियो जवान आहियो कुराड़ा आहियो हर कोई इस्तेमाल करे सघे थो एतिरो ज़बरदस्त फार्मूलो आहे की तव्हां जॾहिं इस्तेमालु कंदा तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त वाकई तव्हांजे हथ केॾो भलो प्रोडक्ट अची वियो आहे ऐं तव्हां ज़रूरु हिन खे ट्राए करे ॾिसजो जेके माण्हू क्रीमूं न बि लॻाईंदा आहिनि त हू जॾहिं वाइटिश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे ॾिसंदा तॾहिं तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त वाकई बाबा ही उहो प्रोडक्ट आहे जेको हर हिकु इंसान जे लाइ ज़रूरी आहे हर हिकु इंसान खे इस्तेमालु करणु घुरिजे सो तव्हां वाइटिश लवली क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी करे ॾिसजो ऐं हिन खे इस्तेमालु तव्हां ॾींहं जो करे सघो था राति जो करे सघो था जंहिंमहिल वणे तंहिं महिल कयो बस लॻाइण खां पहिरियां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो ठीकु आहे सो ही उहे प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हांजी स्किन मुताबिक़ तयार थियल आहिनि तव्हांजी स्किन कहिड़ी बि आहे तव्हां इज़ीली पंहिंजी ऐं सभ खां मज़ेदार ॻाल्हि त तव्हांजी स्किन खे कोई नुक़सान न ॾींदी ऐं तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ ई तयार थियल आहिनि अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था देन तव्हांखे डायल करणो आहे 03-15-799-0595 ही नंबर डायल कयो कॉल कयो या मैसेज कयो उन्हनि खे ॾिसो त बाबा तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट तव्हांजे एरिया में कोन था मिलनि जीअं हू अवेलेबल कराए सघनि अच्छा अॼु प्रोग्राम जो टॉपिक इहो आहे तव्हांखे का हिकिड़ी सलाह मशिवरो नसीहत ॾियणी आहे जेका तव्हां मूंखे अगरि ॾियणु चाहियो था तव्हांखे कॾहिं ईअं किथे थियो हुजे तव्हांखे लॻंदो हुजे त बाबा हीअ जेको मशिवरो आहे इहो सिदरा खे ॾियणु घुरिजे त अगरि तव्हां उहो ॾियणु चाहियो था त तव्हां मूंखे ॾियो मां बि ॾिसां कहिड़ा मशिवरा जेके तव्हां मूंखे ॾियणु चाहियो था

क्या बात है, आपके मैसेजेस हैं, जल्दी से आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की कॉल्स भी पिक करनी है मैंने। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम चंदा, कैसी हो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं स्वीटी आप कैसी हैं? हमारी निदा अली हमारे साथ मौजूद और कहती हैं, फॉर यू मैं और तुम जिस दिन मिलेंगे वो दिन वक्त की पेशानी पर चमकता हुआ एक रोशन सितारा होगा, वो लम्हा जब तुम सामने होगी और मैं अपने सब लफ्ज भूल जाऊंगी, दिल की धड़कन ही मेरा तावन दिन जाएगी, तारुफ बन जाएगी और तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी दुनिया, वो दिन उस सदी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और कहती तुम्हें किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ठीक हो, बिल्कुल अच्छी हो चंदा जाने, समझ गई ना? बिल्कुल मैं समझ गई। और अलीजा भी आपके साथ हमारा शो सुन रही है, तो अलीजा को भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, दोनों परियों का आप हमारे प्रोग्राम की रौनकें हैं जी, तो खुश आमदीद। अच्छा ठूप टूसल से मुलाई मुजाहिद बोजार हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, कितने सिद्धू जी कैसी हैं आप? उम्मीद के मेरी तरह ओके, एकदम झकास होंगे जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम झकास से लस्सी का गिलास। ठूफ चूसल से मुलाई मुजाहिद बोजदार के से डोजी, टॉपिक आपके लिए मशरा ये है कि हंसती रहा करें, हंसते हुए आप बड़ी अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया जी, ये मशरा मैं आपका जो इनाम संभाल के रखती हूँ अपने पास। और ये हमारे साथ ही जिंदगी देने वाले सुन सॉन्ग प्ले कीजिएगा प्लीज, शहबाज जमाली नवाब शाह जी हमारे साथ मौजूद है। ओके मैं कोशिश करती हूँ, आपका गाना मुझे मिल गया तो लगा देंगे। और एक ही मैसेज को आपने 4-5 मरतबा शेयर कर दिया है, ओके जी बहुत शुक्रिया। इमरान अली कहते हैं, बाजी टॉपिक है आप अपने, अच्छा चलें ये तो आपने थोड़ी सी बात अच्छी वाली कर दी है, या पता नहीं मुझे समझ नहीं आया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा कहते हैं, जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ जहाँ जिंदा तो हूँ मगर अपनी जिंदगी के लिए नहीं, अपने ख्वाबों के लिए। क्या बात है इमरान भाई, आपको वेलकम कहा जाता है, ख्वाबों के लिए जिंदा रहना भी अच्छी बात होती है। और ये हमारे साथ है मेरी छोटी बहन कुलसुम भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, और मेरे माँ बाप भी आपका शो सुन रहे हैं। शहबाज जमाली नवाब शाह से हमारे साथ है, गाना आपने बोला है बिल्कुल जी, आपका गाना लगाते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। और मुझे ये बताइए व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स नवाब शाह में मिल रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहिए, जोन सा भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लगाइए, और फिर आप मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। और साथ साथ डायल करते रहिए 03-15-799-0595।

ओके जी, सो बिल्कुल जी बहुत ही प्यारा गाना आप यहाँ पर एंजॉय करें, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे बताइएगा जरूर, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप हमें 888-1 पर ज्वाइन करते जा रहे हैं और आज आप कोई सा भी मशवरा जो कि आप मुझे देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपकी कॉल हम पिक करेंगे। न्यूज ब्रेक आने वाली है, उसके बाद जैसे हम दोबारा आप लोगों के साथ मुखातिब होने वाले हैं तो बिल्कुल आपकी कॉल्स होंगी और आप लोगों के साथ साथ कॉल पर चिटचैट होने वाली है। तो आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0333-221-322-88। अच्छा निदा, मैं बताती हूँ तो मैं बताती हूँ, सब्र करो जरा। अच्छा मेरी ये आदत है ना कि मैं बार बार कहती हूँ कि पोस्ट को लाइक और शेयर करो, ये मैंने इतनी दफा ना कंट्रोल किया है कि मैं मतलब बोलने ही वाली हूँ, बोलने ही वाली हूँ कि भाई पोस्ट को लाइक और शेयर करें। हम रोजाना अगर जो भी चीजें बोल रहे होते हैं ना तो ऐसे बस मैं बोल देती हूँ, तो आज भी मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, कोशिश की कंट्रोल की, लेकिन ये हो गया मुझसे कि मैं बोल ही गई कि भाई पोस्ट को लाइक और शेयर। चलिए आप ऐसा करें कि आप नंबर के ऊपर आता कीजिए, नंबर है 03-15-799-0595, नंबर के ऊपर राता कीजिए, उन्हें बताइए कि आप जो है वो परचेज करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके एरिया में नहीं मिल रहे और साथ साथ जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी जल्दी से अवेलेबल कराइए। न्यूज ब्रेक आ रही है, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगी, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी 3 बजे तक।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, वधीक आसान आसान।
2: क़बूल न कंदो आबदा हरमोज़ बाबति ईरान ऐं ओमान पारां ठहियल कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। आबदा हरमोज़ बाबति गॾियल मुशावरत सां फैसला
3: दरामद जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। माहिदे जी भञकड़ीअ ते ईरानी नाज़ुक
0: ख़िलाफ़। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN।
2: ईरान कतर में मुंजमद कयल 12 अरब डॉलर जे ईरानी असासनि मां 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जे 12 अरब डॉलर मां 6 अरब डॉलर जारी थियणु घुर्जनि। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजी हदुनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे, ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे। कराचीअ जे कारोबारी मर्कज़ गुल प्लाज़ा खे लॻल बाहि हादसो करार, पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वटि जमा कराए छॾियो। गुल प्लाज़ा बाबति अदालती जांच रिपोर्ट खे चालान जो हिसो न बणायो वियो। दुकानदार नेमतुल्ला ऐं संदसि 11 सालनि जे पुट हुज़ैफा खे जवाबदार तौर नामज़द कयो वियो। गुल प्लाज़ा कमेटी जे सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल ऐं ॿियनि खे बि केस में नामज़द कयो वियो। जांच रिपोर्ट मूजिबि गुल प्लाज़ा में बाहि लॻण सबबि 72 माण्हू सड़ी फुत थिया। हिन वक़्त ताईं 4 लाशनि जी बाक़ियात कंहिं बि वसूल नाहे कई। सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फैसले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे CC 2024 जे पेपर्स जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करण जो हुकुम ॾिनो हो। कैरपुर जे कच्छ में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में झेड़ो, 1 ॼणो क़त्ल, 2 ज़ख़्मी। फुलो थाणे जे अध ॻोठ कोराईअ में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो थियो। फायरिंग में रोशन कोराई मारिजी वियो। करावाड़ ऐं मोहम्मद सिद्दीक कोराई ज़ख़्मी थिया। धुरियुनि में छिकताण वधी वई। सकरनि वेझो ॿ ॾींहं अॻु सिंधु दरिया में टिकटॉक वीडियो ठाहींदे ॿुधी वियल नौजवान फ़हीम जुणे जो लाश थियो। ॻोठ दंगवासी नौजवान फ़हीम जुणे जो टिकटॉक ठाहींदे दरिया में ॿुॾी वियो हो। पोटली भरिसां सिंधु दरिया मां अधरोड़ शख़्स जो लाश थियो, इस्पताल मुंतकिल, सुञाणप न थी सघी। सिंध में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। सजावल जुणे जो ऐं मीरपुर भठोरो में धरणा। सजावल जुणे जो में हारियुनि आबादगारनि खुज़दार रोड ते धरणो हुयो। मीरपुर भठोरो में आबादगारनि सजावल रोड ते धरणो हुयो। आबादगारनि जो चवण आहे त सारियल फसल जी मुंद आहे पर पाणी अणलभ आहे, नोटिस वठी पाणी फराहम कयो वञे। लाड़काणो में 4 ॾींहं अॻु राइस कैनाल में ॿुॾी वियल नौजवान जो लाश न मिलियो। वारसनि जो धरणो। लोहर कॉलोनी निवासी नौजवान मुज़म्मल शेख जे वारसनि औरतुनि समेत रसूलाबाद रोड ते धरणो हुयो। नौजवान जे भाउ वहीद शेख जो चवण आहे त 4 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, रेस्क्यू अमलो भाउ जो लाश हथ न करे सघियो आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में हिकु औरत समेत 4 ॼणा फौत। गंबट में क़ौमी शाहराह ते ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टकर, नारी फिज़ा ख़ासकली हयाती विञाए वेठी, अलहयार ज़ख़्मी थियो। कश्मोर में टायरा टुटण सबबि मज़दा BS फीडर में किरी पई, ड्राइवर अली हसन उगाही फौत। कराचीअ जे बल्दिया वारे इलाइक़े में तेज़ रफ़्तार गाॾी जो मोटरसाइकिल खे टकर, पीउ ऐं पुटु फौत। पोतनि जी सुञाणप अब्दुल मजीद ऐं संदसि पुटु अब्दुल जबार जे नालनि सां कई वई। शाहपुर चाकर में घर में दाख़िल थी पुलुट कंदड़ 4 औरतूं पकड़िजी पयूं। पुलिस हवाले न्यू कॉलोनी में 4 औरतुनि मलिक अज़ीज़ जे घर में घिरी पीसन औरत खे यरगुमाल बणाए वरितो। औरतूं सोना ज़ेवर ऐं रोक रक़म खणी फरार थियण लॻियूं त औरत जी रडनि ते ॿिए कमरे में सुतल मर्द जाॻी पिया। औरतुनि खे पकड़े पुलिस हवाले कयो वियो। वाक़िए जो केस दाख़िल। कुंडीअ में लंघ बंदि करण था बिंदुरनि में झेड़ो, भील बिरादरी जो एहतजाज। भील बिरादरी जो कुंडी उमरकोट रोड ते धरणो, लंघ खोलण जो मुतालबो। मंज़ूराबाद वेझो गाॾी शहज़ोर खे बाहि लॻी वई, गाॾी सड़ी रख, ड्राइवर महफ़ूज़ रहियो। खाणोट वटि इंडस हाईवे ते रोड ते कलर जा पटा कढ़ंदड़ शहज़ोर गाॾीअ खे ओचितो बाहि लॻी। बाहि लॻण खां पोइ गाॾी जा गैस सिलेंडर बि फाटी पिया। باعث سبب شہزور گاڑی مکمل طور سڑی رکھ تھی وئی. یورپ میں گرمی وگے پوتن جنگ 1300 کا وتی ویو. رگو فرانس میں گرمی وگے 1000 مانن دے پوتن جی تصدیق. جرمنی میں بھی سخت گرمی سبب شہری پریشان گھرن کا باہر نکرن چھڑے دنو. ٹرام سروس بھی بند. ڈبلیو ایچ او ودھیک فوتگین جو خدشو ظاہر کرے چھڑیو. صحت دے عالمی ادارے ڈبلیو ایچ او موجب یورپ میں غیر معمولی گرمی سبب فوتگین جو انگ 1300 کا وتی ویو ہے. یورپ دھرتی تے تیزی سے گرم تھیندڑ خطو ہے.
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
4: آپ سن رہے ہیں
5: جی اے ایف ایم
4: ایٹی ایٹ نیٹ ورک سندھ کی آواز.
6: پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہو
7: तो पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल.
7: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन.
6: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
7: असन जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा
6: 0331252578
7: جی ہاں 2315525786
6: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
7: سندھ جو آواز.

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: मस्ती गिना के जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा कि आप वाकई कोई अच्छा वाला एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप डी स्किन का फेस वॉश लगा कर देखिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा कर देखिएगा, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि अगर आप सो रहे हैं, सोने से पहले अगर आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लिया और साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश करके फिर आपने जाहिर सी बातें क्रीम लगानी है, तो जब आप ये तरीके कार फॉलो करेंगे ना तो आप यकीन जाने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर से ट्राई करके देखिएगा, आप खूबसूरत ही खूबसूरत होते जाएंगे। इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, इसी पैनल पर आपके मैसेजेस हैं, आपकी कॉल्स का सेगमेंट स्टार्ट किया जा रहा है। तो अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, अगर आप ये प्रोडक्ट डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो कॉलिंग नंबर है 03-22-13-22-88। तो ये वाली फर्स्ट कॉल पिक करते हैं, देखते हैं कौन मौजूद है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम
3: सलाम जी, कैसे सगन मौजूद है?
4: अभी कुर्बान लिखास्ते जो कना कौन
3: का? ओके कुर्बान भाई, छाला तांजो खुश आयो।
4: वाले जी शुक्र अल्लाह का, इतना बेनर नहीं
3: जाओ। ओके प्रोग्राम बदो पिया,
4: बिल्कुल बुद्ध गया।
3: टॉपिक थी छा चवंदा?
4: टॉपिक आज नशीरा पर जो बजे है जो हां जो वदो सात आए ने नशीरा नशीरा पर ले जो बुधाई जो जाओ जो दादा।
3: मुखे बधायो त केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया? आवाज थोड़ो कट जी तो तमा जो
4: तमा बुधायो जे कावन दा प्रोग्राम कयो ये इस्तेमाल कयो बाबा जी।
3: नालो त अचन गुरजे ने तमा के जड़ी इस्तेमाल कयो पया त ओके आवाज़ में थोड़ो नेटवर्क में थोड़ो मसलो आए तो आवाज़ सही तरीके से न पो अचे उन जगह से बी करे कॉल कर जिते तुम नेटवर्क क्लियर इंदो हो जे ताजो आवाज़ इतने सफा साफ सुथरो अचे। ओके सो कॉलिंग नंबर है 03-22-13-22-88। नेक्स्ट कॉल की तरफ अचू था, नेक्स्ट कॉलर केर से सगन मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। केर से सगन मौजूद
4: है?
3: ओके मोहम्मद अजीज भा खुश आयो? ओके अल्हम्दुलिल्लाह खैर लगो पे। आप प्रोग्राम बुधो पे प्यारा भा?
4: जी जी।
3: केड़ो प्रोग्राम आ नालो अचे तो
4: भाई नालो कोंदे जो प्रोग्राम क्रीम

0: प्रोग्राम जो नालो वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो हाओ आवाज कटजी मुख्य बुधा तुम प्रोग्राम बुध पे आया को अच्छा तो मुख्य ये बुधा तो टॉपिक ते चवंदा दोस्तन की याद कंदा ओके ओके गाल तो समझ में ना आई पर ठीक अलाए छो मतलब यो मूं नोट कयो आ त हिकड़े डी अगर कॉल सही अचे थी त नेक्स्ट डे तवा जो कॉल सके न थोड़ो डिस्टर्ब थी वने चो सो असा नेक्स्ट कॉल वठना सी दिसु था नेक्स्ट कॉलर केस असा सगर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो आवाज कट जी दो हेलो हां आवाज कट जी दो सफा हलाए छो
1: हेलो
0: हाँ हाँ अचे तो आवाज खेर तुम बुधा ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बुध पे टॉपिक ते बिल्कुल यही गाल आए टॉपिक ते चवंदो न गालाइंदो चलो मुखे बुधा केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पिया कौन मिली अच्छा चलो सही अच्छा आयरम थैंक यू सो मच केड़े जी हाँ केर समझे अला तुम समझो पे तो बुधा अला कड़ो मसलो आयो एकड़े डी कॉल सही था अचन बे डी कॉल्स थोड़ो मसलो कन थी इन चीज के डिसंदासी फिगर आउट कंदासी छा मसलो आए बिल्कुल सी प्रोग्राम तुम बुध पाया वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया वे तो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के तावन से एक नेक्स्ट कॉल वूँ तुम खबर ही सही अच्छे कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम केड़े से गड मौजूद आ
2: कहाँ सा गड मौजूद अमजद अली विस्तड़ो
0: ओके ओके कितना कॉल कई अमजद
2: मच्छर मच्छर नौशारो क्रॉस जेवे जगो था मच्छर मुझे आवाज बड़ा क्लियर तो अच्छे
0: सफा ताजो आवाज वीआईपी तो अच्छे ये सबनी जोड़ो आवाज वीआईपी अच्छे नहीं जबल ते चढ़ा बिठायो चाबला बिल्कुल यही गाल है मुख्य बताया प्रोग्राम बुधो पा अमजद भाँ भी कॉल की नजर लगी हुई वाणी ताजो आवाज भी कटजे तो हाँ केड़े दोस्तन की याद कंदा अच्छा वाइट एज जब प्रोडक्ट इस्तेमाल कया था या डी स्किन जब बुधा था हाल अवाल तो अलाई छा चयो ओके ओके थैंक यू सो मच हाँ जी सो कॉल सच्ची बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि कॉलर्स क्या कह रहे हैं और ये कॉल के साथ क्या मसला है और चलें जी हम कॉल्स तो लेंगे लेकिन आप लोगों के कुछ मैसेजेस हैं तो उनको भी पढ़ लेते हैं और आप क्या कह रहे हैं वो भी जरा देख लेते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0332132288 कॉल करें तो किसी ऐसी जगह पर जाकर खड़े हो जाएं जहां पर आपको लग रहा हो कि यहां पर नेटवर्क फुल आता है ओके जी सो यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम सिरुजानी क्या हाल है मैं भी आपके साथ साथ हूं नाइस शो एंड आई शेला गुल का सॉन्ग मु दिल तो के दई छड़ी सडो मु दिल तो के दई छड़ी मु दिल तो का वठी छड़ी मु दिल तो का वठी छड़ी लुबना हमारे साथ मौजूद है, हमारी प्यारी लुबी, आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और उनके अलावा हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर डियर सफा भलिया ता बुदा की आयो फजीला सिंधी हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद करते हैं आपको फजीला सिंधी। उनके अलावा हमारे साथ जी यहाँ पर मौजूद है इरम, क्या कहती हैं? हाँ जी, वो अभी तक मेरी दोस्त हैं और बहुत अच्छी लड़की है वो माशाल्लाह। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ साइमा मीर, कहती हैं कि वही तो आज देखो ना। हाँ ये बात तो बिल्कुल है, अगर कॉल्स भी सही चल जाती प्रोग्राम में तब तो ज्यादा ही अच्छा होता, लेकिन चले कोई बात नहीं। और उसके अलावा क्या कहती हैं आगे, आपने मुझे दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया साइमा मीर, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो हमारा शो सुन रहे हैं मोरो से, ओके जी आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और इमरान अली बिरोही भाई कहते हैं कि सब चेहरा सब चेहरा पढ़ा ना कर ए जिंदगी, कुछ मानुन सा मोहब्बत भी आहे। हाँ अगर वरी खबर पे चुन जे असलियत जी पोवा के डोक थींदो आहे। चले बहुत बढ़िया, खुश रहें और साथ साथ वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते रहें। ओके जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। टाइम हुआ जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने पाते हैं, उसके बाद जो है ना जल्दी से वापस आप लोगों के पास आएंगे। सो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग Whitish and D Skin Beauty Show is sponsored by Whitish Beauty Products and D Skin Beauty Products. Istemal karte rahiye aur khoobsurat hote rahiye.
1: GA FM 88 Network, Sindh ki awaaz.
3: Beauty ko banao perfect beauty, best look beauty cream ke saath. जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास, चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर।
4: आप सुन रहे हैं,
5: आप सुन रहे हैं
4: GA FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
7: सुनते रहो GFM 90.4। मस्त जुआनी तेरी यार

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अशोक जी गाना सुन रही है, जरा कितना अच्छा गाना मैंने आप लोगों के समातों की नजर कर दिया है। बिल्कुल जी गाना तो सुन रही हूँ, साथ ही साथ बिल्कुल जी आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे और प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल हमें अभी अभी सुनाया स्टार्ट किया होगा, या फिर जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर मौजूद हैं, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम खास करके उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो लोग ज्यादातर ऐसा होता है ना कि वो सेंसिटिव स्किन होने की वजह से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव स्किन के लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई, इसे सारी स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को जो है ना वो ये बता दी चलो कि जब आप सेंसिटिव स्किन होने की वजह से परेशान होते हैं ना कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएं, कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है, आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या ही जाता है। उसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है, और जनाब डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, डी स्किन फेस वॉश भी ऑल स्किन टाइप के लिए, और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत बना देता है कुल मिलाए कटे सुटे। ओके सो आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि व्हाइटनिंग नाइट फार्मूला है, नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती को बढ़ता हुआ देखेंगे, तो जरूर आप ट्राई करके देखिएगा। ना मिलने की सूरत में डायल कीजिएगा 03 1579905 9

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने यहाँ पर सुना. एक और प्यारी सी आवाज जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है, अली जफर की आवाज में ये गाना होने वाला है, चूरी चूरी. और इस गाने की फरमाइश हमें कर दी हमारी सायमा मीर ने, तो हम ये गाना सुनेंगे.

0: बैठे क्यों।
1: ओके जी, निदा कहती है कि क्या था मशवरा बताएं ना। ये कहूंगी कि आप जैसी हैं वैसे ही रहिएगा, क्योंकि जो लोग ऐसा होता है ना कि जो तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो लोग जरा अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। और उनका अलावा साइमा मीर कहती है, ख्वाब में तो अलाए केतरा भेरा वर्ती आए व्हाइटिश लवली क्रीम, बाकी जाग में अलाए कदें वटंदासी, इनशाला वटंदासी तो सफा दिल जाएगा जी लाड़कानो। ओके जी, ओके लाड़काना, आप आइएगा तो परचेज कीजिएगा, क्योंकि आप परचेज करेंगी, इस्तेमाल करेंगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा वाला प्रोडक्ट है। तो इस्तेमाल कीजिएगा। और विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान भाई कहते हैं कि शाह इंतजार करनी मोहब्बत आहे या उन या वो भी पाना सा जुल्म आहे, अलाई या चीज समझ में नहीं दिया। ये बातें मुझसे मत पूछा करे। और सायमा कहती है कि ना बा असा भी यो कौन समझो सी। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, मुख शावस आए। ओके थैंक यू। अच्छा इरम कहती है आपकी जवाब है। ओके जी, ओके इंशाल्लाह, इससे तो पहले ही होगा मुझे ये लग रहा है, आप टेंशन मत लिया करें। और शोनी कहती है आपकी जान में भी आ गई आप के शो में, अभी अभी उठी हूँ नींद से, और क्या कहती है कि नींद से उठकर ही आपके शो में आ गई हूँ। ओके जी, और ये मैंने एक स्पेशल सा गाना लगाया है, ये स्पेशल सा गाना है जो कि मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि हम अपने प्रोग्राम में सुनेंगे। आज मैंने ये सोचा कि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो इस गाने को सुन लेते हैं। ये मेरा फेवरेट गाना है।

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना जो कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और ये गाना पता नहीं क्यों मेरा बहुत फेवरेट है, और ये गाना मैंने आज पहली मरतबा प्रोग्राम में लगाया। और इसी के साथ साथ एक और गाना जिको ही गानो आए ही असानी प्रोग्राम जो लास्ट ब्रेक थे अनवारो आए आई तमाम से सेकंड मौजूद आए प्रोग्राम आए जना व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बताएं ना।

हमारे साथ यहाँ पर हैं मौजूद लुबना के लिए कैसे दो मेरी प्यारी कजिन्स भी आपका शो सुन रही हैं। मेरे साथ हैं जनाब और मौजूद हैं महक, फलक, अरबेश और एक लड़की और भी है, और एक और लड़की का नाम क्यों नहीं लिखा और कहती हैं कि मेरे साथ जो मेरी कजिन्स बैठी है ना, तो वो आपको पूछ रही है कि ये उर्दू है या सिंधी है, वो आपको उर्दू स्पीकिंग समझ रहे हैं। अच्छा नन्ना बाबा सिंधी आयो, सिंधी माणू।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मथा आबी दहशतगर्दी करण चाहे तो वजीर आजम ए फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी बका जो मामलो आहे, रंडक कबूल न कई वेंदी। सुस्तमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त सिंध तास माहिदे खे हिकु तरफ़ खां मुअत्तल नथो करे सघिजे। सिंध तास माहिदे बाबति भारत जे मौक़िफ़ खे कंहिं बि फोरम ते पज़ीराई नाहे मिली। सिंध तास माहिदे खे ॿिन्ही मुल्कनि तस्लीम कयो हो। पाकिस्तान पाणीअ में रंडक क़बूल न कंदो। आबना हरमुज़ बाबति ईरान ऐं ओमान पारां ठहियल कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। आबना हरमुज़ बाबति गॾियल मुशावरत सां फ़ैसला करण ते इतफ़ाक़। ईरानी नायब परदेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी ईरानी वफ़द जी क़यादत कई। ओमान जो नायब परदेही वज़ीर वफ़द सां गॾु ॻाल्हियुनि में शरीक थियो। काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त गॾजाणीअ में इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे तहत सामूंडी रियासतुनि जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं हक़नि जी रोशनीअ में आबना हरमुज़ जे मुस्तक़बिल ऐं इंतिज़ाम बाबति ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ईरान ऐं अमेरिका जो हिक ॿिए ते हमला रोकण ऐं कतर में ॻाल्हियूं करण ते इतफ़ाक़। अमेरिकी मीडिया जी दावा। अमेरिकी मीडिया मूजिब तहरान हिक ॿिए ते हमला रोकण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सिधी रीति ॻाल्हियूं बि थींदियूं, जंहिंजो महिवर आबना हरमुज़ हूंदो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुफ़ाहमती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि जारी आहिनि। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त अमेरिका ऐं इसराइल माहिदे जी भञकड़ी करे रहिया आहिनि, जंहिं सबब खिते में अमन ऐं इस्तेहकाम बहाल न थी रहियो आहे। माहिदे ते नेकनीयतीअ सां अमल दरामद जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। माहिदे जी भञकड़ीअ ते ॿी धुर ख़िलाफ़ फ़ैसिलाइता क़दम खया वेंदा। ईरान कतर में मुंजमद कयल $12 अरब जे ईरानी असासनि मां $6 अरब जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जे $12 अरब मां $6 अरब जारी थियण घुर्जनि। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामराई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजी हदुनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे। ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे। कराचीअ जे कारोबारी मर्कज़ गुलप्लाज़ा खे लॻल बाहि हादसो करार। पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वटि जमा कराए छॾियो। गुलप्लाज़ा बाबति अदालती जांच रिपोर्ट खे चालान जो हिसो न बणायो वियो। दुकानदार नेमतुल्लाह ऐं संदसि 11 सालनि जे पुट हुज़ैफा खे जवाबदार तौर नामज़द कयो वियो। गुलप्लाज़ा कमेटी जे सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल ऐं ॿियनि खे बि केस में नामज़द कयो वियो। जांच रिपोर्ट मूजिबि गुलप्लाज़ा में बाहि लॻण सबबि 72 माण्हू सड़ी फोत थिया। हिन वक़्त ताईं 4 लाशनि जी बाक़ियात कंहिं बि वसूल नाहे कई। सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फ़ैसिले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे CC 2024 जे पेपर्स जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करण जो हुकुम ॾिनो हो। कैरपुर जे कच्छे में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में झेड़ो, 2 ॼणा क़त्ल, 1 ज़ख़्मी। फुलो थाणे जे हद ॻोठ कोराईअ में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो थियो। फायरिंग में रोशन ऐं कोराड़ो कोराई मारिजी वियो। मोहम्मद सिद्दीक़ कोराई ज़ख़्मी थियो। धुरिन में चिकताण वधी वई। सिंध में पाणीअ जी खुट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। कुंडरी नबीसर खां पाणीअ जी खुट ख़िलाफ़ निकतल आबादगारनि जो पैदल मार्च। आबाशी ऑफिस अॻियां धरणो। दोदापुर में बि आबादगारनि पारां पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मीरपुर भठोरो में आबादगारनि पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ सिजाव लोड ते धरणो हुयो। पाणीअ जी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। लाड़काणो में 4 ॾींहं अॻु राइस कैनाल में ॿुॾी वियल नौजवान जो लाश न मिलियो। वारसनि जो धरणो। लोहर कॉलोनी वासी नौजवान मुज़म्मर शेख जे वारसनि औरतुनि समेत रसूलाबाद रोड ते धरणो हुयो। नौजवान जे भाउ वहीद शेख जो चवण आहे त 4 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, रेस्क्यू अमलो भाउ जो लाश हथ न करे सघियो आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में हिकु औरत समेत 4 ॼणा फौत। कंबट में क़ौमी शाहराह ते ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टकर। नारी फिज़ा ख़ासि खेली हयाती विञाए वेठी, अलाए यार ज़ख़्मी थियो। कश्मीर में टायरा टुटण सबबि मज़दा BS फीडर में किरी पई, ड्राइवर अली हसन उगाही फौत। कराची जे बल्दिया वारे इलाइक़े में तेज़ रफ़्तार गाॾीअ जो मोटरसाइकिल खे टकर। पीउ ऐं पुटु फौत। फौतनि जी सुञाणप अब्दुल मजीद ऐं संदसि पुटु अब्दुल जबार जे नालनि सां कई वई। کوٹ غلام محمد میں عوامی تحریک پارا پانی کی کھوٹ ہے عورتوں تے ظلم خلاف احتجاج عوامی تحریک کے کارکنن لیاقت چوک کا پریس کلب تھی ریلی کڈی دھرنو ہو اگوان سندھ میں پانی کی کھوٹ ختم کرے صوبے خلاف سازشوں ختم کی وجن حیدرآباد میں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ملازمن جو 18 مہینوں کا پگار اور پینشن نہ ملنے خلاف احتجاج ملازمن چونا ہے حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی انتظامیہ جے غلط پالیسی سبب 3000 ملازم 18 مہینوں کا پگار اور پینشن کا محروم ہیں پگار اور پینشن جاری کی وجے

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: तू मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White Age Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मोहम्मद उमर बुगियो ट्रस्ट हॉस्पिटल जिते माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर जी निगरानी में मुनाउन सीनियर का
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सो सुबुदन जा सबन के सलाम मोहब्बतूं प्यार
1: नहीं पा रहा। वालेकुम अस्सलाम। और तजर्बे के हवाले से हमें बताया है। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: जी यास्मीन, क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?

जे नतीजे में हिकु औरत समेत चार ॼणा फौत। गंबट में कौमी शाहराह ते ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टकर, नारी फिज़ा ख़ासकेली हयाती विञाए वेठी, अलहयार ज़ख़्मी थियो। कश्मीर में टायरा टुटण सबबि मज़दा बीए स्पीडर में किरी पई, ड्राइवर अली हसन ओगाही फौत। कराची जे बल्दिया वारे इलाइक़े में तेज़ रफ़्तार गाॾी जो मोटरसाइकिल खे टकर, पीउ ऐं पुट फौत। फौतनि जी सुञाणप अब्दुल मजीद ऐं संदसि पुट अब्दुल जबार जे नालनि सां कई वई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज जीए एफएम 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252578 6।
3: जी हा, 2315525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

की रोशनी में काम करने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इस तरह लू लगने का इम्कान बढ़ जाता है। जिस्म का दर्जा हरारत ज्यादा होने के बाद जिस्म की रंगत सुर्ख हो जाती है, मतली केयर के साथ ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सर में दर्द, नकाहत का एहसास होता है, गशी की कैफियत तारी होने लगती है और ऐसे सूरत हाल में जो मुतासिरा फर्द है इसे फौरन ठंडी या सायादार जगह पर ले जाना चाहिए जहां ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में हो। इसलिए कि हमारे जिस्म की बनावट में सबसे अहम किरदार सेल्स यानी खुलियों का है जिन्हें जिंदा रहने के लिए गजा और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब फिजा में ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार मौजूद नहीं होती तो सेल्स दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर पाते और इसके नेगेटिव असरात जो है मुजिर असरात हमारे जिस्म पर पड़ते हैं और ऑक्सीजन की कमी से सबसे पहले खुलियात ही मुतासिर होती।

0: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125257 86।
2: जी हाँ 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असन जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा
2: 0331252578
3: जी हाँ बुड़ी 331 525 786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

वज़ीर-ए-आज़म पारां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ ऐं ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम क़ाइम करण जी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म जी सदारत हेठि वज़ारत क़ौमी غذائی تحفظ ऐं ज़रई शोबे में सुधारण बाबति अहम इजलास थियो। वज़ीर-ए-आज़म सूबनि जी मुशावरत सां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ जी हिदायत कई। शहबाज़ शरीफ़ चयो त ज़रई शोबो जटादार मुआशी तरक़ी में अहम किरदार अदा करे सघे थो। AI जी मदद सां बि ज़रई शोबे खे बहितर बणाए सघे थो।

अबनर हुर्मुज़ बाबत ईरान अमान पारा ठायल कमेटी जो पहरियों इजलास अबनर हुर्मुज़ बाबत गडियल मुशावरत सां फैसला करण ते इतफाक ईरानी नायब परडेही वज़ीर कासिम गरीबाबादी ईरानी वफद जी क़यादत कई अमान जो नायब परडेही वज़ीर वफद सां गड गालियुनि में शरीक थियो कासिम गरीबाबादी चयो आहे त गडजाणी में इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे तहत सामूंडी रियासतनि जे ख़ुदमुख़्तियारी ऐं हक़नि जी रोशनी में अबनर हुर्मुज़ जे मुस्तक़बिल ऐं इंतज़ाम बाबति ॻाल्हियूं कयूं वयूं।

ईरान ऐं अमरीका जो हिकु ॿिए ते हमला रोकण ऐं कतर में ॻाल्हियूं करण ते इतफ़ाक़ आहे। अमरीकी मीडिया जी दावा, अमरीकी मीडिया मूजिब तेहरान हिकु ॿिए ते हमला रोकण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सिधी रीत ॻाल्हियूं बि थींदियूं, जंहिंजो महिवर आपणे हरमूस हूंदो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुफ़ामती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि जारी आहिनि। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल मुआहिदे जी भजकड़ी करे रहिया आहिनि, जंहिं सबब खिते में अमन ऐं इस्तेकाम बहाल न थी रहियो आहे। मुआहिदे ते नेक नियती सां अमल दरामद जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। मुआहिदे जी भजकड़ी ते ॿी धुर ख़िलाफ़ फैसलाइता कदम खया वेंदा।

0: छा मां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए FM मातली।
0: हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2031 25 75 786।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

वज़ीर-ए-आज़म पारां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ण ऐं ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम क़ाइम करण जी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म जी सदारत हेठि वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़ुज़ ऐं ज़रई शोबे में सुधारण बाबति अहम इजलास थियो। वज़ीर-ए-आज़म सूबनि जी मुशावरत सां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ण जी हिदायत कई। शहबाज़ शरीफ़ चयो त ज़रई शोबो जटादार माशी तरक़ी में अहम किरदार अदा करे सघे थो। एआई जी मदद सां बि ज़रई शोबे खे बहितर बणाए सघे थो।

0: अमेरिका सां सिंधियन ॻाल्हियुनि जो को बि मनसूबो नाहे। ईरानी नायब परडेही वज़ीर कासिम फरीबाबादी चयो आहे त वाइदनि ते अमल दरामद लाइ कतर सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। टेक्निकल टीमनि विच में ॻाल्हियुनि जी हिन वक़्ति तस्दीक नथी करे सघिजे। टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर हालतूं ठीक थियण ते ई थी सघे थो। तारीख़ ऐं जॻहि ते इतफ़ाक़ थी वेंदो। 40 मुल्कनि सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे। आपना हुर्मुज़ बाबति ईरान ऐं अमान जी कमेटी जी बि गॾिजाणी थी। हुर्मुज़ बाबति मुशावरत कई वई। ईरान कतर में मुंजमद कयल 12 अरब डॉलर जी ईरानी असासन मां 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पेशिकियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जे 12 अरब डॉलर मां 6 अरब डॉलर जारी थियण घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजे हदनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे। ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे। सेनेट जे घरू मामलनि बाबति सब कमेटी जो इजलास। टैक्स चोरी बाबति ग़लति ॼाण ॾियण ते कमेटी पारां कावड़ जो इज़हार। एफपीआर अमलदार खे इजलास खां ॿाहिरि कढी छॾियो। एफपीआर खे तमाक बाबति टैक्स ते मुकमल ॼाण ॾियण जी हिदायत। कमेटी चेयरमैन सैफुल लाबड़ो चयो आहे त 3 खां 4 आफ़िसरनि मुल्क जो बेड़ो भोड़े छॾियो आहे। सेनेटर तलहा महमूद चयो त 5 आफ़िसर कहिड़ा आहिनि। सैफुल लाबड़ो विराणियो हुकमरान 5 आफ़िसर पंजाब मां पाण सां गॾु खणी आया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा

0: ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252578 6।
0: जी हा, 3135525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अमेरिका ईरान में अपना हुर्मुस्तान शुरू थे चिंताण घटजन लगी। ईरान की दरख्वास्त से सुबह दोहा में बिन्हीं मुल्क के नुमाइंदन की मुलाकात थन्दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की दावा, व्हाइट हाउस ईरान से आला सतही गालियन से गड टेक्निकल सतह जो गाल भी थन्दूँ। स्टेवर्ट कोफ और जेरेड कृष्णर गालियन में शरीक थन्दा। अमरीकी अहदेदार मूजिब बिन्हीं मुल्क जमलदार मुसलसिल रबते में आन। दोहा में अपना हुर्मुस समेत अहम मामलों से गालू थन्दूँ।

अमरीका सां सिधियन ॻाल्हियुनि जो को बि मनसूबो न आहे। ईरानी नायब परडे॒ही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त वायदनि ते अमल दरामद लाइ कतर सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। टेक्निकल टीमनि विच में ॻाल्हियुनि जी हिन वक़्ति तस्दीक नथी करे सघिजे। टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर हालतूं ठीक थियण ते ई थी सघे थो। तारीख़ ऐं जगह ते इतफ़ाक़ थी वेंदो। सालिस मुल्कनि सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे। आपने हरमुस बाबति ईरान ऐं अमान जी कमेटी जी बि गॾिजाणी थी। हरमुस बाबति मुशावरत कई वई। ईरान कतर में मुंजमद कयल 12 अरब डॉलर जे ईरानी असासनि मां 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जे 12 अरब डॉलर मां 6 अरब डॉलर जारी थियण घुर्जनि। ईरान सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजी हदनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे, ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे। वज़ीर आज़म पारां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ण ऐं ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम क़ाइम करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म सदारत हेठि वज़ारत ते क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़ुज़ ऐं ज़रई शोबे में सुधारनि बाबति अहम इजलास थियो। वज़ीर आज़म सूबनि जी मुशावरत सां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ण जी हिदायत कई। शहबाज़ शरीफ़ चयो त ज़रई शोबो जटादार माशी तरक़ी में अहम किरदार अदा करे सघे थो। एआई जी मदद सां बि ज़रई शोबे खे बहितर बणाए सघिजे थो। मोदी पाकिस्तान मथां आबी दहशतगर्दी करणु चाहे थो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी बका जो मामिलो आहे, रंड क़बूल न कई वेंदी। सुद समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारण चयो आहे त सिंध तास माहिदे खे मुअत्तल नथो करे सघिजे। सिंध तास माहिदे बाबति दुनिया पाकिस्तान जो मौक़िफ़ तस्लीम कयो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे पाणी तरफ़ वधंदड़ हर हथ काटे छॾींदो, पाणीअ ते धाड़ो बर्दाश्त न कयो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हे नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252586
3: जी हां 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अमेरिका ईरान में अपना हरमुस तां शुरू थियल चिकताण गड़जण लगी। ईरान जी दरख्वास्त सुभाणे दोहा में बिन्ही मुल्क जे नुमाइंदनि में मुलाकात थींदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी दावा। व्हाइट हाउस चयो आहे त ईरान सां आला सतही ॻाल्हियुनि सां गॾु टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि थींदियूं। स्टेवर्ट कोफ ऐं जेरेड किशनर ॻाल्हियुनि में शरीक थींदा। अमरीकी उहिदेदार मूजिबि बिन्ही मुल्कनि जा अमलदार मुसलसल राब्ते में आहिनि। दोहा ऐं आपना हरमुस समेत अहम मामलनि ते ॻाल्हियूं थींदियूं। अमरीका सां सिधियन ॻाल्हियुनि जो को बि मनसूबो नाहे। ईरानी नायब परडेही वज़ीर क़ासिम फरीदाबादी चयो आहे त वायदनि ते अमल दरामद लाइ कतर सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। टेक्निकल टीमनि विच में ॻाल्हियुनि जी हिन वक़्ति तसदीक नथी करे सघिजे। टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर हालतूं ठीक थियण ते ई थी सघे थो। तारीख़ ऐं जगह ते इतफ़ाक़ थी वेंदो। 40 मुल्कनि सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे। आपना हरमुस बाबति ईरान ऐं अमान जी कमेटी जी भी गॾजाणी थी। हरमुस बाबति मुशावरत कई वई। ईरान कतर में मुंजमद कयल 12 अरब डॉलर जी ईरानी असासनि मां 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद कश्तिकियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जी 12 अरब डॉलर मां 6 अरब डॉलर जारी थियण घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजे हदनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे। ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे।

0: मोदी पाकिस्तान मथां अभी दहशतगर्दी करण चाहे तो वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी पका जो मामिलो आहे, ॾंड क़बूल न कई वेंदी। सुध समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो आहे त सिंध तास मुआदे खे मुअत्तल नथो करे सघिजे। सिंध तास मुआदे बाबति दुनिया पाकिस्तान जो मौक़िफ़ तस्लीम कयो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे पाणी तरफ़ वधंदड़ हर हथ काटे छॾींदो, पाणीअ ते धाड़ो बर्दाश्त न कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आवाज की डोर से बंधा हुआ।
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।